रोण वाले जेतड़े सब बनने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण

कह कट नाम निवास, जित बोले पत पाए सो बोलिया परवान, फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान, जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान, तिन मत तिन पत तिन तन पले जिन हिरदय रहा समाए, तिन का क्या सालाना अवर स्वालियो काए, नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए। श्री राग महला पहला। अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवन हार, मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार, सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार, नानक साचे को सच जान, जित सेवे सुख पाए तेरी दरगह चले मान। रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंग आईया सत परमल तनवास ता मुख वो वै उजला लख दाती इक दात दुख तिसे पै

कमान सांग तेग बंद गुण तात, वाजा ने जा पक्षियों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़े तन पीड़िए मन में चले विकार रहाओ। कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पाप सा पूछ ना करे विचार, बाबा होर सोना खुशी कुआर, जित सुत्ते

सच मिलै सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवै पत उगवै गुरबचनी पौ खाए नानक सच्चा पा।

नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला। ताप मिले पुन ताप कहो सुस्ती सुप्त समाय लाल गुलाल गह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोषिया हर जप एक।

विचार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछाणिए नदर करे मल तोए।

निरोध कर्म मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्जे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर

लक्ष आनप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ

कूड़ न पावई, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावई, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले सच्चे सच समाए।

मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परने पाए ना विजवे जो पवे दिशंतर देश अंतर

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाव जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मूल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस

कैसी वस्त्र विसाई है, जैसी निभ नाल अग्गै साओ सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर।

ते जात ना पत है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह राम नाम रंग रखिया।

मन के शान हर हृदय जमाए ले, क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया। पित सुतो सगल कालत्र माता, तेरे हो है ना अंत सखाया। रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आत्मे होए त्याई। जप तप संयम हो है जब राखे, कमल बिकसै मद आश्रमाई। बीस सप्ताह रो बासुरो संग्रे, तीन खोड़ा नित काल सारे। दस अठार में अपरम्परो चीने, कह नानक इव एक तारे।

आओ ऐब तन चुकड़ो इन मन मिलद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जान है बुझाई। आखन सुनना पौन की बाणी इन मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया। ती कर रखे पन कर साची नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई पर।

सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ पियाई।

मान अंतर हर रस राव रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज ज्ञान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार के हर राख्या उधार हों तिन के बलिहारने जिना नामे लगा प्यार सोई सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाईए चूके मुह प्यास हर सेती मन रव रहा कर ही मन उदास।

जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए, जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुभाए।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष चौरासी परम दे परम परम होए खुआ।

आप गवाए शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए मन पुखा पुखा मत करें

जिन्हें एक मन नाम से आया गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले इस सच्चे दरबार, ओ अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार। पाईरे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याये मलहों में कदे तोय राव, मन मुख नाम न जाननी जिन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए, विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता से विस्ता माहि समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन।

आए हर हर नाम ते आई जिसनो कृपा करे रजाए जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए श्री राग महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुरु पूछ करे वापार हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार गुरु पूरे हर नाम दृढ़।

आए अंदिन नाम तियाये सहजे नाम समाये अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहें अंदिन नाम तियाये रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार गुरमुख सदा त्याय एक नाम करता

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी न होए सबद न चीने सदा दुख हर दरगे पथ।

आसा सतगुर सेव मोह पर जले कर ही माहे उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद एनस भगत करे दिन राती होमे मार निचिंद। वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए नाम निधान सतगुरु।

गुर प्रसादी मन वसे हौ मैं दूर करे एहो मन तावत ता रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ। मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चान।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए। बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए। असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए। एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए, नानक एक जो

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिनकै बल।

आए देख कुटुंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत वचल है।

सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाही है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी।

है अंत ना पाया जाए, कथनी बदनी ना पाई है हों में विच्चों जाए, सतगुरु मिले है सद पैरच है आप बसे मन आए, पाई रे गुरुमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे।

कृपा करे गुर पाइए हर नामो दे दृढ़ाए बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए मन रे दूजा पाव चुकाए अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार होमे

आए हम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए श्री राग महला तीजा जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार सतगुरु क्या फिटकिया

दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम समा

त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला भगत होए। अंदर नामे रत्या सच्चे सच्ची सोए। एक तिल प्यारा विसरे भगत किने ही होए। मन तन शीतल साथ स्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम दियाए साची भगत तासी है। जा हर वसे मन आए रहाओ सहजे खेती राही है। सच नाम बीज पा

जास। अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुरु का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकायन हर राख्या उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हो मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए, अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हू प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुर पेटिया तिन आए, बिन नामे सब डुमणी दूजे पाए खुआए, तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए, परम पुलाना अंदुला।

की वाणी हर पाये हर स्यों रह समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे रजाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे ले उन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पा

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोय रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मन तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाव

गुर शरण आवे ता निर्मल होए। मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए। मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मलहो में जाए समाए। ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

रंग ना होए, कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड़ ले, जन नानक की अरदास, श्री राग महला चौथा, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास, तन वड पागिया जो आए मिले गुरपास, जिना सतगुर पुरख ना पेटेओ से पागीन बस काल, ओए फिर जोन पवाईए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए, श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मेरे सज्जन।

तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई, लख कोटी कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर ना मिले, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले, विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका, जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा हौ

सतगुरु नो सब को लोचदा, जेता जगत सब कोए, बिन पागा दर्शन ना थिए, पागहीन बैरोए, जो हर प्रभ पाना सोचिया, तुर लिखिया ना मेटे कोए, आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जलें समाए, श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला, कित बिद मिले रस खाए, जाए पुछो सुहागनी तुसा, क्यों कर मिलिया प्रभु आए, ओए वे परवा ना बोलनी, हौ मल मल तो वा तिन पाए, पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार।

आए सतगुरु वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड़ पागी वड़ जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग ही नहीं खाए बिन सतगुरु पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुरु आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए श्री राग महला चौथा दिन चढ़े फिर आठवें रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोस करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मनमुख अंधगवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अखाक किसी चित न पावही बिसरिया।

आ शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप बुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थांग सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर ले उन बिन नामे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो।

चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिससे सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वै मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

तिन सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बां पकड़ गुर का

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

तिसमुख उजल होए, पूरे गुरते पाये प्रगट सबनी लोए, साथ संगत कह कर वसे एको सच्चा सोए। मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ, दुनिया किया वड्याइयां।

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सह हो मैं ताप।

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुरपूरै पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए।

साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रब रहे।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उज्जला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजने।

वड पागी मिल संगती सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आराधिय आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोई रहाओ। दाना दाता

नीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए ने चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पे खत किल विखिरे मन तन होवे शांत एक मन एक त्याये मन की लाए भरांत गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था पिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भक्ति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियें।

अठसठ तीरथ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल। सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार। करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अब गुण कट्टन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार। तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर। लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर। थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान। सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड पागी तन खाट। संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू। सब चूके सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल। जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत। चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ। सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ। चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ। कर कृपा प्रभ पेटिया मरन न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग। कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग। रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद। जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओहो रस जाने जिंद। संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद। जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान। रसना उचरे गुणवती कोय न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान। जियो पिंड तन तिसदा हो सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार। दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। ऊला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक। सदा सदा आरा

गुरपुरे ते पाई अपनी नदर निहाल करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल मेरे मन गुर जेवड अवर ना कोए दूजा थाओ ना पोस जाए गुर मेले सच सोए रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब में रहा समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगई खोज डिठा ब्रह्मंड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेई अरणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, से वडपागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया।

अपार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास। सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम।

साची सतगुर सेव, सतगुर तुठे पाई है पूरन अलख अभेव। रहाओ सतगुर विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया से नाम से आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

हुकम न जापी केतड़ा लिख न जाने कोए जे सौ शायर मेली है तिल न पुजावे रोए कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए पीर पैकामर सालक साधक सौदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे सबना वेखे नजर कर जय पावे ते दे थावा नाव ना जानी है नावा केवड नाव जिथे वसे मेरा पासाओ सो केवड़ है थाओ अंबड़ कोई ना सकई हो किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे वड़े हाथ वड़े आईया जय पावे ते दे हुकम सवारे आपने चसाना तिल करे सबको आखे बहुत बहुत लैने के विचार केवड़ दाता आखी है।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंक

को पूछो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू आपे मोल अपार, साचो मन महत तू आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत, आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहे था आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू।

जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए सांच रते गुरवाक तित तन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हाँ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यों पंखिया जाली बद्धक हाथ, गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुतिये कोई न संगी साथ।

दूरे ज्यो जल सोड़े मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाई है जा आपे नदर करे फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल काम काम ना आवे खोटी अवगणियार ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार आवण।

केते पंडित जोत की बेदा करे विचार, वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान, बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख वखान। सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए, हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए, नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला। जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास, पुन दान चंगियाइयां।

होए। अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ। विन राशि वापारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त रही कार बार। विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार, लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चले कारज सार, वन जा रहा स्यों वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार, मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अपार।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जा।

दर कर ठाक न होए, नानक एक और अव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सोहना किया करने हार, रव सस दी

एक निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हो मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

जाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवऊ, बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे, टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला, चेले ना ही ठाओ। बिन सतगुरु नाव ना पाये, बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना, ज्यों सुन्ये कर काओ। बिन नावे दुख देहुरी, ज्यों कलर की पीत। तब लग महल न पाइए, जब लग साच न चीत। शब्द रपे कर पाइए, निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो आपने, गुर पूछ कार कमाओ। शब्द सलाही मन वसे, हों मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा, साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले, तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा, हर राखें उर्धार। सो क्यों मनो विसारिये, सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी वार। शब्द ही ते पाये, हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे, मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको, वढ़ो वढेरी होए। गुर बिन आप ना चीनिये, कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए, हो मैं करे न कोय। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए, जोबन बाद खुआर। ना माने सुख सेजड़ी, बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए। शब्द मिले रंग होए रहाओ। गुर सेवा सुख पाइए, हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी, गूड़ा हेत प्यार। गुरमुख जान सियाणिए, गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी, फिर मोही रंग लाए। मंथन साच विकसिया, कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी, निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे, ता फिर रावे नार। इकत तागे रल मिले, गल मोतियन का हार। संत सवा सुख उपजे, गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे, खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाने रव रहे, ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए, कथन ना पाया जाए। व्यापारी बन जा रहा।

तिस चिल न तमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले।

ज्ञान ध्यान तुन जानी है अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाई है।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रव रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों

ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमत होए तब पाये, सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो नाक तई, जे सतगुर पेते सोए, ज्ञान पदार्थ पा

हमें मैल न जाए। सोहम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे विचर चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए पुली थोर न काए। गुरु दिन को ना दिखावे अंधी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहाजनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोला।

ने जग छद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हौ मुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर कै सबद संतोख जोगी सह सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाणु आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास अष्ट तात पाप साथी करिए शब्द विदास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब दुखी ठोक बजाए कहने हाथ न लगई सच टिके पत पाए गुरमत तू सालाना होर कीमत कहना जाए जित तन

आसा अंदर जमिया आसा रस्त खाए आसा बंद चलाए मोहे मोहे चोटा खाए अवगुण बद्दा मारिए छूटे गुरमत नाए सर्वे खाई एक तू जो पावे त्यों रास गुरमत साचा मन वसे नाम पलो पत साथ हो मैं रोग दवाई है।

जिन तन मन साज सुधारिया तिस प्रीति निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन से रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए। कंचन के कोट गत करी।

सबको ऊंचा आखी है नीच ना भूसे कोई। एक ने पांडे साजे है एक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाई है थुर बख्श ना मेटे कोई। साधु मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए। ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

नाले हर सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले एनस हर रस भोग चित चले वित जावनो साकत डोल डोलाए बाहर ढूंढ भी गुचिए कर्म है वक्त सो थाए मनमुख हो मैं कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रकत बिंद का एतनो अग्नि पास पिराण पवने के वस देहुरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगिए मुआ ना लोड़े कोए सुख जीवन किस आखिए जिस गुरमुख वस्या सोए नाम विहुने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए जो सुपने निस्फुलिए जब लग निद्रा होए क्यों सरपन के वस जियड़ा अंतर हो में डोए गुरमत होए विचारिय सुपना इहो जग लोए अगन मरे जल पाइए जो बारिक दूधे माए दिन जल कमल सो नाती है दिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर

जो पर्वत गाथड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले गुर।

नारी सेज पतार चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिगार केहू खेर लाइए छोड़ चले कारबार।

प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए। नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए। हर जियो भगत वचन सुखदाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरुमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा हो मैं कर्म कमाव दे जमदंड लगे तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए। मन रे गुरुमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागो पाओ। सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए। जे हर हर की कह बहुत लोची है किरत नामे ते आ जाए। हर का पाना भगति मन्या से भगत पै दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए। जे सो अमृत नीरी है पी दिक फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार सतगुरु का पान।

हर का नाम निधान है, जिस अंक ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और न कोए, गुरु प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी दीर्घ सुहावड़ा,

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुमाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुक्म ना जाने बपुणे पूले सिरे गवार मन हज कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर सांस न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोहणे गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवा।

सिर फिरे समाज ना लगे सुवाए, तीने लो व्याप्त है अधिक रही लपताए, बिन गुरु मुक्त न पाए ना दुबदा माया जाए। माया किसनो आखी है क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है हमें कर्म कमाए, बिन शब्द है परम न चूके ना विच्चों हमें जाए, बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए, शब्दे हमें मारिए माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाए गुरमुख सह सुवाए, बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए, भगत वत्सल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए, नानक शब्दे हर्षा लाहिए कर्म प्राप्त होए। श्री राज महला की जा, माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पुलाए, मन

जात गवाई, सुर नर तिनकी बाणी गावे कोई न मेटे पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संयम ना पड़े, दूजा पाव ना जाने। सतगुर पेके निर्मल हुआ अंधन नाम बखाने। एको पड़े एको नाव बूझे, दूजा अवर न जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए। सतगुर सेवे ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सो चित लागे, आवन जान रहा है। पंडित पर पढ़वाद।

संहार। श्री राज महला तीजा। सतगुरु मिले फेर ना पवे, जन्म मरण दुख जाए, पूरे शब्द सब सोजी होई, हर नाम में रह समाए, मन मेरे सतगुरु से चित लाए, निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए, रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई, ज्यो राखे त्यों रहना, गुर के शब्द जीवत मरे, गुरमुख पव जल करना, वड्डे पाग नाव पाइए, गुरमुख शब्द सुहाई, आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई, इतना मनमुख शब्द न पावे, बंधन बंद पवाया, लक्ष्यो राशि फिर आवे, दिशा जन्म गवाया, पगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते, अंगिन गुण गावे सब निर्मल, सहजे नाम समाते, गुरुमुख अमृत बाणी बोले, सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक आराधे, गुरुमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है, गुरुमुख वसे मन आए,

रहाओ सच्चे शब्द पत उपजे सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हो तिन बलिहारे जाओ मन मुख

ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कद हरकत दे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस पा।

उचरे तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस पोगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत

तिस जेवड अवर न कोई दियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छदा अम अब्बे थावो मिचड़ा तैन पाई सब सजना तुद जेहा नाही कोई दियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोहल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित न जानदा हर इक तै काणे लायो ने ज्यो पावे तिवे निभाए जियो तुसी पोगो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए तैनाइयो हौ होआ माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हौ आया सामे तिहंडिया पंज किरसान मुझे

मन चिंदी सो फल पाएंदा सबे काज सवारियन लायन मन की सुख जियो मैं सदिया सबो तंगड़ा गोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर समद वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मत्सत तर के हा।

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुरी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाए प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर तर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया धर्म से तीवा पार ना कीतो कर्म ना कीतो मित कहो नानक की जय पहरे प्राणी तन जोबन स्यो चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेत पेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले खिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त हो।

ज्ञान ज्ञान गुण संजम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संजम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन

मेरा मेरा कर पालिया वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा जिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

अनचित वै तन संच वै वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे हो वै अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल कहो नानक की जय पहरे प्राणी से जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर चलन वेला आदि का सेवो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहादी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ।

जिन पेवकड़े नाम समालिया सब सफलो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ती काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंड वर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रले रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा ले सो कूड़ अहंकार।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए, मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए, जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नजर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे, चरण कमल कर बोहित करके सहसा दुख न व्यापे, गुर पूरा पे टैवट पागी आठ पहर प्रभ जापे, आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे, मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली, मन प्यारिया

रूप में ताया। चित्रगुप्त का कागद फाड़िया, जमदूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लगे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी, इच्छ सगली पुनिया, पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया, मन उपजिया दिशासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारिया जियो।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुरपुरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए।

नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वट पागी गुर पाया गुर सब्जी पार लगाए। रहाओ हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हों बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पद पो जिंदू सब किले दुख पर हरे। रहाओ काट काट मैया मन

मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद महला तीजा गुरसवा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर पौड़ी।

सतगुर सत दृढ़ाया सत रहो निवलाए नानक सब दी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू तू जाने पेत जो की कह सो हर जानदा मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा तरमी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता डरिए केत जिना नानक सच पछाने।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुझ आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाए।

के सुख विहाए, नान सो ना मनो ना विसारिये, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा, सतगुर सेव सुख पाया, सत नाम गुण तास, गुरमति आप पछाणिया, राम नाम प्रगास, सचो सच तमावना वड्याई वड्डे पास, जियो पिंड सब तिस्ता शिव करे अरदास, सच्चे सब सलाना सुखे सुख निवास, जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाई है मन मुख मोह विनाश, ज्यों पावे त्यों रास तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास, सब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास, जिस तू दे तिस सब किछ मिले इक ना दूर है पास, तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जास, सब तुदे नो सलाह दे दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा, पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा माया मोह प्यार, अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूरख गावार, दूजे पाए जगत प्रबोध दा न बुझे विचार, बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा, जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार, सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार, आपे नो आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार, नानक शब्द रते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार। पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए, जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम पे आए, गुर सबदी हर पाए हर पार लगाए, मन हट किन न पायो पुछो वेदा जाए, नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा, नानक सो तूरा वरियाम जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया, गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया, आप होवा सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया, सोहन सच द्वार नाम प्यारिया, मन मुख मरे अंकार मरण बिगारिया, सबो वर्ते हुकुम क्या करे विचारिया, आपो दूजे लग खसम विसारिया, नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा, गुरपुरे हर नाम दिलाया तिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीरत गाई कर चावन मग दिखाया, हों में मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमति जम जोहे न साके साचे नाम समाया, सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाई लाया, जन नानक नाम ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी जो मिलिया हर दीवान स्यों सो सबनी दीवानी मिलिया, जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू उसके मोह जिथे सब पापी तरिया, उस अंतर नाम निदान है।

आप पछाने सावत राखे इकत कार्याने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा भगवती उत्तम होए नानक सत समावे सोए महला तीजा अंतर कपट भगवती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल तोवे मन की झूठ न जाए सत्संगत त्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए पौड़ी सतगुर जिन्नी त्याया से कर न सवाही सतगुर जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुर जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिनको हुआ कृपाल हर से सतगुर कैरी पाही तिन ऐसे उठे मुख उजले।

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब दुख गवाए।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुख

अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर जा।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया, गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हो रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हो हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया।

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर करिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो माज महला चौथा हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल मेलाइए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिख्या सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो सतगुर दाते नाम दृढ़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत ली चै जियो हर सत्संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत्संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी।

तिसके हौवारियां। मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन, हौ सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो। जय जय देखा तें तें स्वामी, तू कट कट रविया अंतर जामी। गुरपुरे हर नाल दिखा लिया, हौ सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका, सब एका जोत सबाइया। सब इका जोत वरते पिन पिन नार लई, किसे दीर लाइया। गुर प्रसादी इक नदरी आया, हौ सतगुर विट्टो बताया जियो। जन नानक बोले अमृत बाणी, गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी। उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पर उपकारिया जियो। सत चौपदे महले चौथे के, माज महला पंजवा चौपदे कर पहला। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिल्प करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हौ कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी। चिर होआ देखे सारंग पानी, तन सो देश जहां तू वस्या। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हौ कोली हौ कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हौ कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। सेव करी पल चसा ना बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। रहाओ राग माज महला पंजवा। सारुत सुहावी जित तुद समाली, सो कम सुहेला जो तेरी काली। सो रिदा सुहेला जित रिदै तू उठा, सबना के दातारा जियो। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौ निद तेरे अखुट पंडारा। जिस तू दे सो त्रिपत अघावे, सोई भगत तुम्हारा जियो। सबको आसे तेरी बैठा, कट कट अंतर तू है उठा। सबे सांझी वाल सदाइन, तू किसे न दिसे बहरा जियो। तू आपे गुरमुख मुक्त कराए, तू आपे मनमुख जन्म पवाए। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा। अनहद वाजे सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा में

पहला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे जियो खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीर्थ स्नाना निवली कर्म आसन चौरासी इनमें सांत ना आवे जियो अनेक बरख किए जप तापा गवन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल तीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाये होरत कितै न पाती जियो निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकाती जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माणा

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगह अगोचर बे अंत अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रस

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

जित मैं सतगुरु मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, तन मूरत चसे पल कड़िया, तन सो ओए संजोगा जियो। उद्दम करत मन निर्मल होआ, हर मार्ग चलत प्रम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो। अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमासे, नाउ नानक कीने भोगा जियो। माज महला पंजवा, सगल संतन पै वस्त इक मांगो, करो विनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख वरिया।

हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावे, पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रतपाला, संत खेले तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा, तू जल निद हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे, तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारिक पी खीर अगावे, ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियारे दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख अगले देखे, मन हर रस सबते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाए दुलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मत पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुकत पै कनेरे, नाम निधाना गुरुमुख पाईए, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पै पुनीता, सगल उधारे पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जहां को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए, ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय सेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठक बैठक सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलबिख काटे निर्मल थिया, आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा, सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेट तो हो गई बलाए, सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पर्दा जियो। माज महला पंजवा, ओत पोत सेवक संगराता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने,
जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौर जियो। माज महला पंजवा, सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सू का हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुर न होई है जौला जियो। माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सबके मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक तो, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ कोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद समालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वखाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हौ बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुबदा पत्थर लीजे, नानक कहो प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना, जल थल नीर।

मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसे अराधे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ताबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीत लाया गुरपूरे वजी वधाई नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मने अधारा भगत जीवे गुण गाए अपारा गुण निधान अमृत हर नामा हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूरे होवे पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुद ही मिटी चूका पोलावा गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन तारो तुमरी कृपा ते हुए परगाता सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई।

आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावे गुण अगम अपारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याये जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल विख जावे, मन चिंदे से ही फल पावे, सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सबस को दिए जियो, नाम जपत सर्व सुख पाये, सब पौ बिन से हर हर त्याये, जिन से व्यासो पार ग्रामी, कारज सगले थिए जियो, आए पया तेरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों लह मिलाई, कर कृपा प्रपक्ति लावो, सच नानक अमृत पिए जियो, माज महला पंजवा, पए कृपाल गोविंद गोसाई, मेघ वर्ष है सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठाड पाई करतारे जियो, अपने जी जंत प्रत पारे, ज्यों बार माता सम्मारे, दुख पंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो, जल थल पूर रहा मेरवाना, सद बलिहार जाये कुर्बाना, रैन दिन सत्य सदा ते आये, जे खिन में सगल उधारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चुबारे, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोइंदा, से नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए समाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संता सेती रंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दुलभ दे कोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरगो पाला, कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शर्म असाड़ी जियो, माज महला पंजवा, चरण ठाकुर के हृदय समाने, कल कलेश सब दूर पयाने, सांत सुख सहज तुन उपजी, साधु संग निवासा जियो, लागी प्रीत ना टूटे मूले, हर अंतर बार गया पर पूरे, सिमर सिमर सिमर गुण गावा, काटी जम की फासा जियो, अमृत वर्षे अनहद बाणी, मन तन अंतर सांत समाणी, त्रिपत अघाए रहे जन तेरे, सतगुर किया दिलासा जियो, जिसका साथ तिसते फल पाया, कर कृपा प्रभ संग मिलाया, आवन जान रहे वड पागी, नानक पूरन आसा जियो, माज महला पंजवा, मियो पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया, दया कलेस पया सुख साचा, हर हर नाम समाली जियो, जिसके से तिन ही प्रतपारे, पार ब्रह्म प्रभ पैर खवारे, सुनी बिनंती ठाकुर मेरे, पूरन होई काली जियो, सर्व जिया को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो, मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया।

अब तुसे किया जाए जीओ। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास सह बेनंती आठ पहर तू त्याई जीओ। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाध लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जीओ। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जीओ। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जीओ। हथी दिखी प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जीओ। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है, दुख का डेरा काया जीओ। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जीओ। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाय, प्रभ परम पुलावा लाया जीओ। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जीओ। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जीओ। सत वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सत शब्द मन मानो जीओ। सत सालाहन बड़ पागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे हैं, सच नाम निशानो जीओ। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच त्याई है सद ही, अंतर जामी जानो जीओ। माज महला पंजवा, रैन सुहावड़ी दिन सुहेला, जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंचा पारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान नान।

खाते, तुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेविया तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर

चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलग अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वसिया जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जां कै गृह नव निज हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन मैं थाप उठापन हारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंड कवल जिस होए पर।

जिन देखे सब उतरे तलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीव बिनस्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांछे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये, जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक को प्रभु होए दयाला तेरा सीता सहना। राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला, इको अंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं तर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पछोतावणिया। हुकुम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच

छूटे सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए पगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाय संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावणिया हों वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अब अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावणिया रे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुदे जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख कह समावणिया तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याये सहजे सच समावणिया हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरत गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुझ सला है न रजा कबहू सच्चे नामे की पुख लावणिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर के शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया
रतन पदार्थ पलर त्याग है, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुखने सुख न पावण्या, अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, कै मार परम चुकावण्या, परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावण्या, सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावण्या, आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावण्या, माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावण्या, हों वारी जियो वारी निरपौ मन वसावण्या, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल सब तरावण्या, रहाओ मन मुख मुग्ध करे चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावण्या, मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बुझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावण्या, सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधिन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावण्या, रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावण्या, जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर के शब्द सहजे सुख समावे, हों बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावण्या, सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावण्या, जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावण्या, माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जी ओ सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावण्या, हौ वारी जियो वारी सत संगत मेल मिलावण्या, हर सत संगत आपे मेल है, गुर शब्दी हर गुण गावण्या, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावण्या, बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावण्या, एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावण्या, बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावण्या, गुरमुख हो वै सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावण्या, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावण्या, सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावण्या, माज महला तीजा, आप बंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावण्या, हौ वारी जियो वारी हर गुण अंदिन गावण्या, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवण्या, रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावण्या, पाओ भोजन सतगुरु तुथे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावण्या।
सतगुर ना सेवै मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाएं मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावने। शब्दे साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिध नाम मन वसावने। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावने। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावने। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वड्याई, दुख सुख सम कर जानने। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलानी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावनिया। हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावनिया, हर सच्चा गुर भगती पाई है, सहजे मन वसावनिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुरु दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावने। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हो मैं मल लावने। सतगुरु सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यो चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावने। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावने। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हों में ममता सब देखोवे, अंधिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे पाग गुर पावने। आपे बक्से मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावने। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावनिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावनिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावनिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावनिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछोतावनिया। सतगुरु मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावनिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उधारे, सच रते सदा बैरागी, हों में मार मिलावनिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके, चौथे पद की सार न पावनिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अखा पारा, हर रस रस गुण गावनिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावने। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावने। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावनिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावनिया, गुर ते सांत भगत करे दिन रात।

गुर के सबद सद रहे समाए, सच सलाही सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के सबद रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हौ वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, हों मैं मैल गुर सबदे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे सोबा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो सबदे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर के पै उजल हौ मैं मन जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, सबदे नृत्य करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरुमुख भगत साए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर के शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सलाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवे से सदा सोहे, सोबा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सत बाणी तुदे सलाहन, रंग राते भगत करावणिया। सबको सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूके फेरा, जा तुद पावे ता नाए रचावे, तू आपे नाओ जपावणिया।
गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक स्यों लिव लागी सदी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वखरा मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया सबदे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक स्यों मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसे।

तेरे पद सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

पिछू ना होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठौर ना ठाओ, तम पूले जो सुन्ने कर पाओ, हलत पलत

कूर लिखे ते कूर कमावे है, जल जावे कूर चितलावण्या। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावण्या। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज महल है तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे। होमे मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावण्या। हौ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावण्या। तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावण्या। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए। पूरे भाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावण्या। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए। सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावण्या। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देश अंतर पवे दूजे पाए खुआए। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावण्या। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। एक कूड लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड बोल बिखावण्या। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जा हो में सोखे। सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावण्या। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावण्या। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा। तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा। आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वजावण्या। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावण्या। अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावण्या। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया। नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई। गुर कृपा मन वसावण्या। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए। मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावण्या। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए। बैठ सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावण्या। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावण्या। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावण्या। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख।

तीजा गुरुमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे होमे मार बंधन सब तोड़े गुरुमुख सब सुहावणिया हों वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरुमुख गावे गुरुमुख नाचे हर से ती चित लावणिया रहाओ गुरुमुख जीवे मरे प्रवाण आर जा ना छीजे शब्द पछाण गुरुमुख मरे न काल न खाए गुरुमुख सच समावणिया गुरुमुख हर दा शोभा पाए गुरुमुख विच्चों आप दवाए आप करे कुल सगले तारे गुरुमुख जन्म सवारणिया गुरुमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरुमुख होमे चूके पीर गुरुमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरुमुख सह समावणिया गुरुमुख नाम मिले वड्याई गुरुमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरुमुख शब्द करावणिया गुरुमुख अन दिन सब दे राता गुरुमुख जुग चारे है जाता गुरुमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया बाज गुरु है अंध अंधारा जम काल गरठे करें पुकारा अंधिन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा में दुख पावणिया गुरुमुख आपे करे कराए गुरुमुख हृदय उठा आप आए नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सबद दिखाए सतगुर पूरा आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावणिया हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावणिया बाज गुरु को सहज न पाए गुरुमुख सहज समावणिया रहाओ तू आपे सो है आपे जग मोहे तू आपे नदरी जगत परोवे तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरुमुख हर देखावणिया आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरुमुख आप सुनावणिया आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावणिया आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया आपे गुण दाता।

आपसे मारे आप जीवाए, आपसे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपसे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभु।

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सह समावणिया रहाओ। कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुख दाता, गुरमत सह समावणिया। काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण ना चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया। काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया। कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम त्यावणिया। अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया। अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया। आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माद महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा।

सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावण्या रहाओ। आपे गुरदाता कर्म विदाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावण्या। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हों में परम चुकाया। अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावण्या। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे। हर गुण गावे शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामो पुल्ले देश जाए। करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा।

कर कृपा आप मिलावणिया। माज महला तीजा, मन मुख पड़े पंगत कहावे, दूजे पाए महा दुख पावे, बिख्या माते किछ सूजे नाही, फिर जूनी आवणिया। हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मिलावणिया, गुर सेवा से हर मन वस्या, हर रस सहज पियावणिया। रहाओ वेद पड़े हर रस नहीं आया, वाद बखाने मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कथिए शब्द सुहावे, गुरमति मन सच्चो पावे, सच्चो सच रवे दिन राती, पिहो मन सच रंगावणिया। जो सच रते तिन सच्चो पावे, आपे दे न पछो तावे, गुर के शब्द सदा सच जाता, मिर सच्चे सुख पावणिया। पूर कुसत तिना मैल ना लागे, गुर प्रसादी अंदिन जागे, निर्मल नाम वसै पट पीपर, ज्योति ज्योत मिलावणिया। त्रै गुण पणे हर पत न

तो पंडित होई आप तरह सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर वस चक साध पावणिया हर वस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत् ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करें सदा दिन राती हों मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हों मैं मार एन सुप्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हों मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हों मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा घट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेख सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे घट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया।

माया मोह शब्द जलावण्या, माया मोह जलाए सो हर सो चित लाए, हर दर मैली सो बा पावण्या। रहाओ देवी देवा मूल है माया, सिमरत सास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजम सच कमावे, गुर पूरे नाम त्यावण्या। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलक पलक दोवें गवाए, सुपने सुख न पावण्या। पेयड़े तन कंत संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर सहज रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, एक रव रहा कट अंतर, मिल सतसंगत हर गुण गावण्या। सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चेतना आवे, बिन नावे बहु दुख पावण्या। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथा।

गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पंक्ति परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई।

जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावनिया आपे करता दे वड़ियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावनिया माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

चाड़े कर कृपा दास नर निहाले गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली।

पूरा प्रदान सो मस्तक जिसने पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगन पातशाहिया मंदा मूल न उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना

सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए पै दूरे, शर्म आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे चूरे, चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे, कट कट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे, पाप विनाशन सेवया पवित्र संतन की दूरे, सब छबाई खसम आप हर जप पई थरूरे, करते किया कपार सो दुष्ट मोए होए मूरे, नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे। बारह माह माज महला पंजवा कर चौथा

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम हर ना न मिलिए साजने कत पाये विश्राम जित पर हर कंस ना प्रगटी पत नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

सार भी गुच्छना प्रभु बिन अवर न कोए, प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए।

वैसाख सुहावा तां लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अग्गे सब निवन। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है।

मनन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे

प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास असार सुहंदा किस लगे, जिस मन हर

नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसर सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट दही मन अंग

खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें कामना पुछे जात, सतवें संज किया परवास, अठवें क्रोध हुआ तन नास।

तू न जाने अकबल टंडोलिम टूंडिम डिठ में नानक जग तू का कमल हर पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप सृष्ट उपाती रंग तरंग उपार्जना बहु बहुविध पाती तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

मर जम में आया जाया बिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

हंस संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सोहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। पूर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे, छप्पर नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अनदिन हर हर नाम के आए, ओ आप सुता कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि सदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गृही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाए का।

परया पर तोवा। आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा। नानक अंधा होए कै दसे राह सब समुहाए साथे। अग्गे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापे। पौड़ी महारुति सब तू करी मूर्त विचारा। तू गणते किने न पायो सच्चे अलख अपारा। पड़िया मूर्ख आसी है जिस लब लोभ अहंकारा। नाव पड़ी है नाव बुझी है गुरमति विचारा। गुरमति नाम तन खत्या भक्ति परे पनारा। निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्यारा। जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा। सच्चा साहो इक तू होर जगत वणजारा। श्लोक महला पहला। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान। सरम

मुसलमान सदाए नानक जेते कूड़े आर कूड़े कूड़ी पाए पौड़ी। एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा विन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा एक बाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का पर

तौ नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावै। महला चौथा, पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावै। तज काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावै। तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावै। नानक साचा मन वसै सात शब्द हर नाम समावै। पौड़ी, राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो, हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने, दर पड़े पंडार रीते इक खने। ताजी रथ तुखार हाथी पाथरे, बाग मिलख कर बार किथे से अपने। तंबू पलंग निवार सराय के लालती, नानक सच दा तार सिनाखत कुदरती। श्लोक महला पहला, नदियां होवे तेनवा सुम होवे दुध कियो। सगली धरती शक्कर होवे खुशी करे नित जियो। पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ। पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला।

दामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली कीजे भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर्दी बानिए, खुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार सबक सुनाया, इक होए असवार इकना साखती इकनी

वेदा गंग बोले सच कोए, मोया गंग ने की सत होए, एक गंग वरते संसार, मूरख गंग पवे मोहे मार, नानक आखे एहो विचार, सिस्ती गंग पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाई है खोटे सतिये बार बार, खोटे सच्ची दरगे सुटिये किस आगे करे पुकार, सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार, श्लोक महला पहला, हम जे जिमी दुनिया पीरा मसालता राया, मेरवद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे दिहंग आदमी, ना सप्त जेर जिमी, अस एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंगलो, ना सप्त दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तू ही महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आसवसे, अस एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, परंगे ना गिरा जर, द्रक्त आब आस कर।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन मुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विश्व जय खाई है, सच्चा सबर सलाह सच समा

बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित काट सच ना पाए सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे तट हो।

नदर सरासी बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास उसे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास उसे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोलन।

ते सागरं संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विकसिया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया सच्चा शब्द विचार काल विदुषिया ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे तोते मूल ना उतरे जेसो तोन पाहे नानक बख्शे बख्शे नाहे तपाई पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छद मंगिए सुख सुख दुख दोए कर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया उजड़ पुले रहा गुर वे खा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया निदरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिरे बेतालिया श्लोक महला तीजा पै विच जमे पै मरे पीपो मन में होए नानक पै विच जे मरे सहला आया सोए महला तीजा पै बिन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पै बिन जे मरे मोह काले उठ जाए पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हा सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुरु होए दयाल ता नव निध पाई है सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है श्लोक महला पहला सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाही पेगा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोमन ताही

ऐं दर्दी बहाना जाहे लकी कासे हथी फुमण अगो पिछी जाहे ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला

मोया जीव दिया गत होवे जा सिर पाये पानी नानक सिर फुटे सैतानी इना गल न पानी वुठे हुए हुए बिलावले जिया जुगत समानी वुठे अन कमाद कपाहा सबसे पर्दा होवे वुठे काहु चरे नित सुरही सातन दही बिलोवे तित के होम जग सद पूजा पै कारज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वजाई नानक जे सिर फुते।

करे पौन पानी क्या जात परती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया सच जे मंगे दान से तुद दे जेहा सच तेरा फुरमान।

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, तिस विच भूख बहुत नैसा।

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद अंकार, ओ नामुआ जो देखनहार, जय कारण तट तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वक्त न जाने, हाउ नामुआ मेरी मुई बलाए, ओह नामुआ जो रहा समाए, कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ, ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले।

होगी गण दस द्वार, पंच वसै मिल जोत अपार, आप तुले आपे वणजार, नानक नाम सवारन हार। गौड़ी महला पहला, जातो जाए कहां से आवे, कह उपजे कह जाए समावे।

जाए, मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, दह दिस सारे कर्म लिखियास।

नाम संजोगी गोयल फाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला

होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए, बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन

कह रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रभ

गए होए, जो तिस पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड़ दाता देवन हार, सोत नाही।

ज्यो पावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सब शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अपख कहाया अपयोपी आया हम तै विसरे नाम समाया क्या डरी है डर डर है समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांस बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाँ कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लग लोभ मुख

हौ तुद आसा मेरी काया, तू सुन सिखावारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुटर होइए नारी, तू काया रहिए सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी में जा किस लिया, तामन पल्ला पाया, हल्त न सोबा पल्त न टोई, एला जन्म गवाया, हौ खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसै का पाना रहाओ, साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जारे, जियो पिंड सब रास तिसै की, मार आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला। अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी।

ऐसी साधना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल।

लज टूकस मूसा पाई रे। मन मुख करे ते का दुख लागे, गुरुमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिनकी आसोई हुआ, कितना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे ऊने, जो रासे रंग लाई रे। तिनकी पंख होवे जे नानक, तो मूड़ा किछ पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला, कब की माई बात कब चेरा, किदू था वो हम आए।

केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा लेके तकड़ी सो।

तरे अंश न चाहया जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे। गौड़ी बैरा गुण मेला पहला, हरणी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सौ मिले, वार वार हो जाओ।

अपार सह सुभाए मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार मछली हो वहाँ जल बसाए जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौ वसे हो मिलोंगी बाप पार नागन हो वहाँ तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहा।

न पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत बसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सोथाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए हर गुण गावे बैस सुखाए रहाओ। जलो एह जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा इक गावत रहे मन साधना पाए हौ मैं विच गावे बिरथा जाए गावन गावे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार। गावत रहे जे सतगुर पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ। इक गावे इक भगत करे नाम न पावे बिन असनेहे सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राखिया सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विच्चों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बख्शे नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे देव डिहाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करणी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख इव मन लया सवार हो मैं विच्चों तजे विकार। जो पुर राखियन मेल मिलाए कदे ना बिछुड़े शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला की जा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अन दिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पचाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मार गुर शब्द।

जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

साई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए।

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूजे, अंग अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, हास करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को

राते हर वे परवाओ सत्य मैल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पर जल उतरो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप खुला के प्रत आप खुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुरु सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हौ मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत विरला बूजे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौरी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजै गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे हर का नाम रखे उदारे नाम रते पौजल उतरे पारे सतगुर सेवे सदा मन दासा हो मैं मार कमल परगासा अनहद वाजे निज कर वासा नाम रते कर माहे उदासा सतगुर सेवे तिन की सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी हम दिन जपें

भोग हृदय नाम नित हर रस भोग गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किने विरले चख डीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागन जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत।

एक होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान ले दरगे ले छबाए।

पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए अन दिन भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार गौरी बैरागन महला तीजा कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव करे गुण समले सौरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरे पेये फिर वसे कहो कित विद पाये आप निरंजन अलख है आपे मेलाये रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आये गढ़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने मेरे हर प्रभ लेख लिखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंदक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौरी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई संत जनो जिस देखो जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहा हो हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गपकीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो मूड मुगद निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे इको सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैस पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम सुभावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई।

पहला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ते हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा फिर कर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारंग प्रीत बसे जल पारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया

तन खाटे, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत सीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन दे हो हर आस तुम।

त्यागे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिबसै देखे माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए और सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए पूरा कछ पाचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी गुर सिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया तावत पंच रहे हर त्याया अंदिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तूर जिना मुख लाई तिन कूर त्यागे हर लिव लाई ते हर दरगे मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल कद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रब रहा बनवारी हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हमने हर नाम बनंजय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर बनज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करे व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साहु।

सो जंतर है जो दासन दास जन नानक नाम से आया गुरुमुख परगास। गौड़ी बैरागन महला चौथा। नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार सिरे वेगारिया सिर पार उठाया। जो गुर की जन सेवा करे सो कर के कम हर लाया। मेरे राम तोड़ बंधन माया कर के कम लाए। नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया। कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया कै ताई। जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख न लागे। गौड़ी बैरागन महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हर

अत बुरा, जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सखा।

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन तो पानी।

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

हमारा ताप सिरत साफ सब हर कै बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति औस

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुरु कहमोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम में नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर किर

स्वामी। सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने। जिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है। स्वामी कौ किथे हर पौ नसीए, हर आपे बस ले प्रभ साचा, हर आप छदाए छुटिए। मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए, सतगुर की शरणाई पज पो। मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए, रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता। जित सेवे निज कर वसिए, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस खसिए। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, ले लाहा हर मन हसिए। हर हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर रस चखिए। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटिए। ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनके निकट न पिटिए। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर, जित सेवे लेखा छुटिए। जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल न कटिए। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी। दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन सन लोच कनेरी। राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी। हर मिलिया आए प्रभु मेरी, रहाओ जो हमरे मन चित है। स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी, अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया आए प्रभ मेरी। अंदिन अनद पयावड पागी, सब आस पुजी जन केरी। जगन्नाथ जगदीशर करते, सब वसगत है हर केरी। जन नानक शरणागत आए, हर राखो पै जन केरी।

जो पानी कागद बिनस जात है त्यों मनमुख गर्भ गलाडे। हम जाने कछु न जाने आगे ज्यो हर रात है त्यों ठाडे। हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है। राव साकत हर रस सा

अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ग्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम

सतगुर दाते नाम जड़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ सत कोट रमैया रमत राम राए गुर शब्द गुरु लिव लागे हौ मन तन देवो काट गुरु को मेरा परम पौ गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभु ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब

चाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरुमुख जिंदु जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा, बड़ पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। बड़ पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संता।

मन अनदिन अनद्रस जियो हर पायणा वद पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे वेखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे निक सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासिया।

मेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजू तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभु सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख बिहानी रहनी जियो, मैं मिलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हूँ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सब जी हर प्रभ गाजे जियो। आपके शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख।

जय जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिरका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरुमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो। गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो, वड पागी जप नाओ जियो। मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सत

मन अंदर अमृत गुरमत हर मंगवा जियो, मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो, मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो, हौ नाम विटो कुर्बान जियो, हौ नाम विटो कुर्बान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो, गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो, हर हो दयाल।

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हों मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हों मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पास।

साप कर उपाया लख 84 जोन परमाया साध संग पयो जन्म परापत कर सेवा पद हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभिमान जीवत मरहे दर्दे पर।

कहो नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार।

सदा अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौरी ग्वारेरी महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहरते आई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम ते आवो रहाओ जिन कीता मूर ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवे निध

गुरका शब्द अमृत रस चाख। अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज। क्या मानस कहो क्या जोर, चूठा माया का सब शोर। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल। महा पुनीत पय सुख सैल, वदे पाग पाया साध संग। पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम।

सिर ऊपर ठाडो तब लगाए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

मेरा पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला, रहाओ जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दीवाने, हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं पता।

तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

कर कृपा संतन सच कहा सर्व सुख एहो आनंद लया साध संग हर कीर्तन गाय कहो नानक वड़।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने।

रस रस भोग कर बहु रंगी कहो नानक जिस पै कृपाल गुरपुर ताके काटे जाल गौरी ग्वारे री महला पंजवा तो कृपा ते मार्ग पाये प्रभ कृपा ते नाम ते आये प्रभ कृपा ते बन

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पाग।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेड़े ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर।

कवन बपारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सौदा जोरे।

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सब ते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

0: तू है मेरा तकिया, मन तन अंतर तू ही से आया, मरम तुम्हारा गुर ते पाया, सब गुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर ते कह।
1: गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा, व्यापक हरख सो

माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीवे प्रभु ओट तुम्हारी। रहाओ व्यापत अंग बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, तहु नानक जिन

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आमन जाना साध के संग पार।

पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर

गुर पूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवां गुर प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत हो।

माया मगन ना कछु मोह है। उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के कंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान। आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो।

किरत संयोग सत्य उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाये, प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये। शील संयम प्रिय आज्ञा माने, इस नारी को दुख न जमाने। कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, तन सती दरगे परवानिया। गौरी ग्वारे री महला पंजवा, हम तनवंत पाग सच नाए। हर गुण गावे सहज सुभाए रहाओ।

सतगुरु अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

दुख दर्द प्रमता का पाजी रहाओ, जाको रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपतायो, जाका कहया दर्दे चले, सो किसको नजर ले आवे तले, जाका सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहू नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना,

तह सहज अथारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हर्ष अनंत सोग नहीं दिया सो कर गुरु नानक तो दिया। गौड़ी महला पंजवा कवन।

गौरी महला पंजवा। आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा। आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई। सोईना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

नाहे हर सा प्रीतम कर मन मीत प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ रे मन मेरे तू ताको सेव आद पुरख अपरंपर देव किस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा।

के अघकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वक्त पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगाते हर सिमरत त्रास सब नाते सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाव साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जाके हृदय वसे भगवान गौड़ी महला पंजवा एक सो जाका मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सच्चाओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन

हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुरपुरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुरपुरे आप, मन मुख को लागो संताप।

मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तै दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल हृद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तब अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो साफ साफ प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाथे सुख आए समाए, ढील न परी जा गुर फरमाए, इस पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का बिरसिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौरी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए। रहाओ गुरु के चरण हृदय उधार, अग्न सागर जब उतरे पार, गुरु मूरत सो लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए।

जाकी दृष्टि सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौरी महला पंजवा। तै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना। अगन सागर मह व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया। राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास, गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाम

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सुमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आए रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत रह।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सो लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमै सोई रामाना, जल तल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किसके

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरुष विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो।

किस्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभु अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभु के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सुमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा रिद माए बताए, मन बाचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान।

खादा पहनदा मुँह कर पाए। किसनो जो है दूत धर्म राये, किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ। साकत की ऐसी है रीत, जो किस करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया। बजे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए। रहाओ अपने स्वाय हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सकल बिदारिया। रखना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनित बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेस नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौरी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभु ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभु सोए रहाओ महातपत सागर संसार प्रभु खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान इसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा हाथी पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार।

नानक दरगे पाए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभु हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभु राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो भिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभु मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ

0: का नानक टेक गौड़ी मैला पंजवा। बार राक्षोर लै समाल कर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मंथन राता राम कै रंग। रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विच सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप। गौड़ी महला पंजवा। तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही। हर बिसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे। सोवड पागी निचल थान, जह जपिय प्रभ केवल नाम। जह जाइय तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा।
1: जो प्राणी गोविंद से आवे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, काट काट अपना

साध तूर कर सुड मन जाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर त्याई है गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांस पई

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच क्रम।

आगे आप क्यों थान वस जाते हैं, आप कह रहे मन हर को जाते हैं। पप प्रवान सत निशान जाको आप करे फुरमान, आपके दाता आप प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सद ही सुख पाया। माया करी पूरन हर राया, रहाओ कहो नानक जा।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए पजो।

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुरु प्रसाद नानक सुख बासन। गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल। ताप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे। अनिक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे। सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे। नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया। गुरु गोविंद।

नित प्रतिपारे बाप जैसे माई, प्रभु की शरण उभरे सब कोए, करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पति गवाई, नानक हर गुण निरपोगाई। गौरी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

फगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मा रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुख

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर

को संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे आन दिन फिरो तिस पिछय विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरख रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण गहो।

मैं कोई संत मिला वे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हाँ।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस दिन पंच दुहेले ओ बस अगोच।

सब सुख पायो होना सा सोई फुन होसे सुख दुख कहाँ दिखायो। खंड ब्रह्मंड का एक कोठाना गुर पर्दा खोल दिखायो। नौ निद नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैथ जायो। एक कनक अनक पांच साजी बहु प्रकार विचायो। कहो नानक परम गुरु खोई है तिव तत्त मिलायो। गौरी महला पंजवा औद।

खेद करें हर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोहि तिनके तीरज पाया संती मंत्र दियो मोहि निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निर्भव संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ से आया रहाओ एक महल तू हुए असारो एक महल निमानो एक महल तू आप

चारों जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राख है तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अपरा।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुर के मोको सतगुर शब्द बुझायो।

ऐसा जोगी वद पागी पे तै माया के बंधन काटे। सेवा पूज करो किस मूरत की नानक किस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता। हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो तिह तन से गुर शब्द दीपक पर गासा। प्रम की जाली काकी काकी जाको साथ संगत विश्वासा। तारी ले पव जले तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा। पूरन होई मन की आशा गुर के त्यो हरंगा। नाम खजाना पगती पाया।

श्रेष्ठ ओह चंद चकोरी, राम संत में तेज किछ नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ, हम जिन कीर्तन रसन रमोरी। तुम समरथ अपार अत ऊंचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल त्राके गौड़ी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुर।

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

सर्व सुखदाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम सुतारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप इक किना रहाओ, सुख संपत बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलियो है मूड़ नंग, चोआ चंदन देह फूलिया, सो तन कर संग रूलिया, मोहे मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर।

मन तर कर दे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो। रहाओ कल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिक बिखिया पसरी अतकनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर के तत परम पो खोया।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच दिखा दिया, गुर कृपा के दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक नाम।

मेरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

आराधी है, संत संग हर मन वसे, कर्म मोह पौसा जी है, रहाओ वेद पुराण सिमरत पने, सब ऊंच विराजत जन सुने, सगल स्थान कै पीत चीन, राम सेवक पै रहत कीन, लख चौरासी जोन फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहु में रही, हर साध शरण नानक गही, गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविये, सास सास हर त्याये, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगन ते, नानक को

आनंद कना आवे जी के संग काम रहाओ, कटिये तेरा अनुरोग, तू गुरु प्रसाद कर राज योग, हर रस जिन जन चाखिया, ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया, सो

गहीर साध संगत मिल हर रवे हैं से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कह कर तल नव निज सिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किछ नाही ता कह कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जा कह गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान प्रब का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा छिन में सासवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रह रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग थे, कृपा निज प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए, रहाओ एक रैन के पावन तुम आए, बहु जुग आस बदाए, गृह मंदर संपै जो दीसा, जो तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलख सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, चिन्मय होत पराए।

है रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिया रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो हो दयाल सतगुर अपना ताए मत बुद पाइए मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे सर्व सुखा सुख

है। अनुक बंधन माया परमत परमाया गुण लुद नहीं पाया मन विषय ही मैं लुझी है। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग दौड़ी माला।

सुख रे हरख सोग हान मिर्त दुख सुख चित संसर गुर मिले राव जौ लो हों किस सोचो चितवो तौ लो दुखन परे जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिके रे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे कोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरु मिल त्याग्यो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्ट आग्यो निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख तृष्ण सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाहीं निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाहीं लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूरन होत न कामा, जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तूरा।

पतित पवित्र लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ चितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

जोर तुम्हारे सुख बसां सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुपकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी इक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी।

पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ, जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ, सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध। ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज, पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप। तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप, गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजन हार। गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा, जप पूरन होए कामा रहाओ। राम गोविंद जपेंदियां हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारिय जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे जीविय पव जल पइए पार, मिर साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ, जिंदु तू मीठे हर गुण गाओ। सच्चे सेती रतिया

सर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराध्य उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाच।

मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एहु खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यों चूठो त्यों जग, देखता उठतावे, फुगत मुकत का

माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता क्यों

साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोग मोह माया ममता सुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परसे जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कह लोग मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहा पयो तें बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संघौरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इनमें कटते रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तैहारियो गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दी क्या पूजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सहज समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने कीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत पस कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

लोए नारी पुरुष सबाई लोए रब सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मोको एक बुझाया एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वर्ते सब लोई एक से सब ओपत होई राह दोवे खत्म एको जान गुर के शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त पेर क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार है पंच मार सात उधार है रहाओ जिसके अंतर सात वसावे जोग जुगत की कीमत पावे राम सब एको गृह उद्यान है करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक पिछला मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे पैर अच रहे ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम सुपाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हों में मारे करनी सार जब तब संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौरी महला पहला सीमा गही व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापे ना जम दोखं मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बार सोए रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे अंदिन जागे सच विवलावे सो जोगी मेरे मन पावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुरु सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर नहीं केवल निरपो ना हो अनाथ नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बार एको जाने गुर के शब्दे आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दी सह तो आप निराशा काम क्रोध बिक भूख से आसा नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सत सोई दर्शन देख पई मत पूरी अखट मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संस्कार

एक दिव तारा देवा सूची हर रसारा सत करनी अब अंतर सेवा मंत्र तास्या अलख अपेवा जय जय देखो तैसे साचा बिन बूझे जगरत जग काचा गुरु समझावे सोजी होई गुरुमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु कहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीन है सो तप विचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ताके दास गौड़ी मैला पहला ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार असारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाख दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका सीत समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट में खासा हरनाखस ले नखो विदासा दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम विदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरुमुख साच पगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पथ खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इक तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पथ कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली एनक फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस

सेवा एक न जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्याग कवरे, पाय मिले सच साचे फसरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जा रे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राज तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसते, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता, गौरी मैला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसन लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ शोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तक सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन

किसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, किसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो किसको जिसका यो जियो, गुरु सब जी मत अमृत पियो, नाम

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हों मैं करप देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हों हों करप नहीं सच पाई है, हों मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हों मैं कर राजे बहुत आवे, हों मैं खपे जन्म मर आवे, हों मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे, हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हों मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी महला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो भूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेचल कोई न दिसे संसार है, अप्रयो काल कूर सिर मार है, नेचल एक सच्चा सत सोई, जिनकर साजी तिने सब गोई, ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी शेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन शब्दे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौरी महला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैठ सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच जोत अपार।

सेवा करें, ठाकुर नहीं दीसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दीसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझ।

जुगचारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरुमुख उतरस पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरुमुख रह समाए। गौड़ी मैला की जा, गुरुमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उधारा, गुरुमुख सोबा साच द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरुमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरुमुख विचो हो मैं जाए, गुरुमुख मैल न लागे आए, गुरुमुख नाम वसे मन आए, गुरुमुख कर्म कर्म सच होई, गुरुमुख अहंकार जलाए दोई, गुरुमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरुमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बह निक जाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुगचारे होई, गुरुमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु

गुर कै शब्द अंतर सहगिरी दे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुवाए, बिन गुर साचे परम पुनाए, मनुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

उपावन हारा, मर्ज मैं फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिक्का माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, किस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सह समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा, रहाओ हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वसिया सच सोए, गुरुमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हो मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखा

आर तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कुटुंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर न कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई सदा आनंद हर नाम ले विलाई गुर मिलिए हमको शरीर सुध भई हौ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिन से क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरुमुख रतन को विरला लेवे नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पह पचन तिहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहने हों मैं मैल गवाए सबद रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मिला।

आप छड़ाए छुटिए सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारिया राजम काल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किच कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किच सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

आस जपत पाओ अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत ए निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन पोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द निरिद अंतर तार है पंच जना स्यो संग निवार है दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए।

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाई न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै कृपाल कृपा निज, इस पै खलासी हो।

जाने मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के

एक हैं आप अनेक हैं पांच, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख

बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी मैला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन त्यायो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाउ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिए जम की फासा गुर के बचन जागिया।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार। सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जम पुरबादा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले। रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता। जीवन प्राण

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रखवाला।

खोजत फिरे असंख अंत न पारिया, से होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की ओर संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन।

रेण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सैसो संग न गयो, साकत मूड लगे पचमोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाभ तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं बिसरानी।

पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपाने, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सा तन

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सो जानिया नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन कर।

सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनमाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन मिले।

सब दे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुणसार है सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन ता।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अमदिनो जिस बाज वखर कोई न सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

नानक कामन सदा रंग राती, हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो, हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए, यूं मिलिए माए, तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया।

चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सातन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सातन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर पाए।

अन ना पानी, पानी अन ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया करे आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर के सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए, इहो शरीर पूर कुसत परिया, गल काई पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन

मिली है प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे सच शब्द सिगारे हों मैं मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुरु बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अंदिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौनिद पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहता जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यो मरिए खिन में राम नाम किल विख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा गुरमती तन पाईए सेवा सुरत भगत के साची विच्चों आप गवाईए हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए आप सराय करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहार।

आद गवाए सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना सब सुहाए नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए नामे उपजे नामे बिनसे नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिखिया लोभ लुवाए बिखिया लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिनछि दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए मन मुख मुकुट गवार तिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग तिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक दिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष नाही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

आवे जा साध संत इकत्र हो गए तहा तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो इक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो प्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराधिये जम पंथ बिखरा अग्न सागर निमक सिमरत साधिये कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल गिरदाया पदक वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाये सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नाम।

बिनवंत नानक करो कृपा, समरथ सब कल धारे। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी, सबके ऊंच दयाला। विशंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना। दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नाशे। जी जा के प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा। पई पूरन काला बिनवंत नानक।

संत मान त्याग कर भगत गौरी मोहे साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे प्रम नासे मन सिंधिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया।

ये मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया। प्रमुख होयो सांत सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

हम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बाछे सुर्ग नाचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिथम ए माया, कर कृपा सतसंग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक रात

0: पौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूती है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै श्लोक लालच झूठ बिकार।

या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित

गनिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे अमदिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द तिसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो तिसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुर पूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुर पूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए ताको मात पिता।

अनेता आते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को।

परमत पछताते आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाए पंडार हर

जो देना सो दे रहे हो पावे तहते जाए। खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास, खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास। खेले बिकसे अनब स्यों जाको होत कृपाल, सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल। खेद ना दुख ना दान ते।

लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न वृद्धि कच बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुरु प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप जुगा दी हूं।

जतकत ओही समाहे, पूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुने चरना, काल काल अनिक पछतावे, बिन हर पगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस।

काल ते जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जी आप दिवा।

आगा चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

छच्छा चार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियान बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत।

पौड़ी जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी।

बिंस तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा के हाथ

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ डेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे, हों आवे जाए। टहत टहत अब टह परे, साध जना शरण आए, दुख के

नहीं, जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपे मिल साधु, पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ छ

आवै। बांध्यो आपन हों हों बंदा, दोष देत आगे को अंधा। बातचीत सब रही सियानप, जिसे जनाबो सो जाने नानक। श्लोक पै पंजन अग...

पौड़ी। बब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुखना। परमेश्वर नर देवी देवा, परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डह काए, दुत्तर महा बिखम ए माए। गुरु

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत।

पैर विरोध मिटे ते मंगते, हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते, वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत दिहानिया साकत मुगद अजान, रलक मुए जो त्रिखावंत, नानक कीर्त कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बस्यो रिद माही, हुआ की राड़ मिटत बिन साही। राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है अहं बुद्ध विकारा, राड़ा गुरुमुख राड़।

बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत्। लाहा माया कारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हो संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे

पाव जल से काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनेक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच

आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा व्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, पुरज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कले स्तन माय मिटावो। सिमरो जास दिसंबर एक है, नाम जपत अगणित अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुदाखर, कीने राम नाम इकाखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी नावे। ताकि एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोय उदारो।

योग हर नाम जपत पछवाए वियोग जमवाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे।

लता नाम की महिमा संत हृदय वसे है, संत प्रताप दीर्घ सब नसे, संत का संग वड भागी पाए, संत की सेवा नाम ध्याए, नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान, खप शास्त्र स्मृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया, अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पासी, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव, महा उदास कपि सरथीव, अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अच्छादन, निमक निमक कर शरीर कटावे, कौ भी हो मैं मेल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे, मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे, सोच करे दिन और रात, मन की मेल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न भिख्या करे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची वीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहु मूच, बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे, पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपाव दर गैने सिजे, छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जगत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साफ जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे, जे को जन्म मरण से डरे, साफ जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साफ संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेता, निर्तन को

अंतर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मलहरिया।

उबारिया बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन पोजन सुख सूद दीर्घ पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को देन ते निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाय किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्दब प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छपिस नाय कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर तन सुहारा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विषन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

नमस्कारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पतंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद

ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साफ साफ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जिन प्रसाद संपूर्ण फले, जिन प्रसाद परम गत पावे, जिन प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नाम।

खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है,

प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सह, साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पारब्रह्म, साध के संग पाए नाम।

साधु कैसंग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग तरम राय करे सेवा, साध कैसंग सो बासुर देवा। साधु कैसंग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कैसंग सर्वथान गम, नानक साध कैसंग सफल जन्म। साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध के संग कलू कतहर, साध के संग नरक पढ़हर। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट जीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का

दर्श बड़ पागी पाये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कहीं कोट होए पुजारी, कहीं कोट आचार व्यवहारी, कहीं कोट पै तीर्थवासी, कहीं कोट वन प्रमेय उदासी, कहीं कोट वेद के स्रोते, कहीं कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नरसन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट बेस पू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई।

प्रब पावे ता पतित उधार है, आप करे आपन विचार है। दो आश्रिया का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरण आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत बिख्या में रचे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुर प्रसाद नानक सच कहे। कभू होए पंडित करे बखान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे।

अष्टपदी। जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

अहंकार, अनित तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे

रचया समाए, आप उपदेश है समझे आपे रचया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार। उसके तिन कहो किस होए थाम सनंतर एक कैसोए, अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना।

और अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे है, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जून लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खेंटे करना पाई।

संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग है।

नानक संत पावे तां ले मिलाए। संत का दोखी अद बीच से टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुंचे। संत के दोखी तो उद्यान बरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। संत का दोखी अंतर ते थो था, जो सांस बिना मृतक की लो था। संत के दोखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आपे ही खाए। संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावे ताले उबार। संत का दोखी यूं बिललाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे। संत का दोखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुएला। संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत। कीर्त निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्ट कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किर्त ना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास विरास। सब कछ वरतै तुसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से श्लोक।

नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुकी टेक बिरति सब जान, देवन कोई कै भगवान, जिस कह दिए रह।

तै पाप जपिए हर बिंद कह हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार।

निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बढ़पा गए नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सही सुबाए हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्भ है जा फट किस किसका दिया दर्भ है आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तैहो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखान नाल चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख कर देवन हार अवर त्याग तू किस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए क्यों व्यापार बिरला व्यापार है नानक ता कह सब बलिहार है चरण साध के तो पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड पागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनेक विघन पे साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे ओट गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालनहार पूखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस किसका ओ करने जोग किस दिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जा के मन गुर की प्रतीत किस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जा के हृदय को होए सच करनी सचा की रहत सच हृदय सतमुख कैत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच पाता श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी।

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुरु बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाम सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह स्यान लिया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम कपियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहु बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास

मोह माया के संग ना लेप, मन में राख्या हरा एक अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख सहसे नासे। तपत माए ठाट वरताई, अंग भया दुख ना उठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चूका निरपौ हो बसे, सगल व्याध मन से खैन से। जिसका साथ तिन कृपा भारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके क्रम गवन, सुन नानक हर हर दस्रवन। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर को सोए। पोत पोत रव्या रूप रंग, कहे प्रभा फाद कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो धमसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपास सब मीत विसारो, चरण कमल उदमे उधार। करण कारण सो प्रभ संगरत, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। यो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ भावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान। मंत्र बोधो हर कह नाए, दैव स्थावत आवे ठाए। ताको बिघन ना लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जन फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो का चोकाचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लपतावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्गनता, इनसे कहो तुम कवन सना था। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना भो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतर स्मैल, बिनस जाए हो मैं विकफैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, सास ग्रास सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगें जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मनाह। एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एक को एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराध प्राचक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया, परया को शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, अपनी पगती लाए। अष्टपदी जाचक जा।

कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि मां सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में, पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग, अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुकुट जन भया, जन्म मरण दुख क्रम गया। इच्छुकुनी श्रद्धा सब पूरी, रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुर है सत्य है बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम, आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरी है संसार, बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया, गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण निर्गुण।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एवं कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत जब आपन आप सार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रब केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरु को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित खाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर

जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे पूप कवन तृप्तावे। करण करावन करने हार नानक करते का नाहि कुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कते पा कौचीन।

चेहरा बिस्मर बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जै अचल अछेद अपेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप उसको आपे आदेश।

बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आते तो ऊंचा जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ज्ञान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप दो पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अकोल ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जा तिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाए कुमते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो संदर्शी तप का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा के सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिस एहतियात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर पर आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्येक खोनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दोए लिहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साज परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मंगते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एक का टेक रखो।

सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुर प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पै अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। अपसदी संत संग अंतर प्रगटीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत करण माए आकाश दयाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल बंसिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम कौन पानी बह संतर माहे चार कुंट बह दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं को ठाओ गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर्ण खत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाई है गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद धर्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार सब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सर सत तिस तब ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस नहीं मिलाए कौन निकट कौन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वर्तारा सर्वनैन आप देखनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जात एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्त तो रहे जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तां ले समाए इसते होए सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतने की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि गतमित कहीं न जाए दूसर होए तासो जी पाए तिस ताकि या सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रसोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस पर साथ सब जगत कराया जन आवन का यह सुहाओ जन के संचित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

उदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप करे लोके निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनहद वाजे सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिन के साथे। शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

पव बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभु के द्वार। पौड़ी खस्तम

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपै करत विपरीत, पर त्रै रमै बकै साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कह ताई, अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमै अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब हो न

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख ऊ

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

आई खुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिनकी ती तिस पार लगाई गुरमुखानो फल।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसाबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी तुद जेवड़ होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वय।

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याय तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए, ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन, ओए ते हो जेहे दैव जाए, नानक दोही श्री खसम आपे वरत है, नित कर कर देख।

कनेरियां जे कार वत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारियां नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यो लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुरु पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मुह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है सो ले जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याईदा सच सच्चा सतगुर इके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वश के जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके ओए बोले किसे ना पावनी मोह काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा हर प्रभु का सब खेत है हर आप किरसानी लाया गुरमुख बस जमायन मन मुखी मूल गवाया सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करते मार कढाया किरसानी जमी पाओ कर हर बोहल बख्श जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायन जिनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत कराया महला चौथा सारा दिन लालच अटिया मन मुख हो रे गल्ला राती ऊंगे दबिया नवे सोत सब तिल्ला मन मुखा दे सिर जोरा अमर है नित देवे पला जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे से अपवित अमेद खला काम व्यापे कसुद नर से जोरा पुछ चला सतगुर के आखे जो चले सो सत पुरख पल पला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक पल पला पौड़ी तू वे परवाओ अथाओ है अतुल क्यों तुलिए
सेवड पागी जे तुद त्याएंदे जिन सतगुरु मिली है। सतगुरु की बाणी सत रूप है, गुरबाणी बनी है सतगुरु की री सह होर कच पिच बोल दे। से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है, ओना अंदर होर मुख होर है। बिक माया नो चख मरदे कड़ी है, श्लोक महला चौथा। सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वख कड़े जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुरु पास, कालन कूड़ियार न लबनी कितै थाए पाले। जिना सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कितरक वेरायन मन मुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओहो आप वरते अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे, एक आपे वख कड़े ठगवाले। महला चौथा। जिना अंदर नाम निदान, हर तिन के काज दे आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जा करता वल ता सब को वल, सब दर्शन देख करें साबास। साहो पात साहो सब हर का किया, सब जन को आए करें रह रास। गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया। गुरपुरे दान दिया हर नेचल, नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख न सके, सो करते आप पचाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगतानो सदा रखदा आया। कौड़ी। तू साहिब अगम दयाल है वरदाता दाना, तुझ जेवड मैं होर को दिस न आवई। तू है सुगड़ मेरे मन पाना, मो कुटंब दिस आमदा। सब चलन हारा आवन जाना, जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे। से कूड़ियार कूड़ा तिन माना, नानक सच त्याय तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा। अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे। अद विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब कारा अंदेशा परम चुकावे। सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अन दिन हर गुण गावे। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तूर मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी। जो तुद सच त्याएं दे, से विरले थोड़े। जो मन चित इक अराध दे, तिन की बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याए दी, से थाए पए जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे, से मोए मर जम्मे।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करता रे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते।

तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिये ता जे किच आप दुखी चै सब करता अपनी कला वधाए देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आने वाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे सच देवे सच वणंजले गुण कथे निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए गला ऊपर तपावस न हो।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े, तिनको दर टोई नाहीं कोई जाए। मिले तिन निंदका मोह फिके, थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड्याई वेख न सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुश्त उठाही। हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही। नामे की वड्याई।

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे तैज रखे प्रभ सोई पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया कूक पुकार को ना सुने को औखा होय होय रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना हो।

तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको को कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पहनाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोई आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख हम।

से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान दिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से ही जान दे, जो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई। श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हिरदय नाम समारिया, जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया, महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार, सतगुर मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार, पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी एक मन एक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे, तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे, तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे, श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ आरे, जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे, गुर सिखा अंग

लिट उठ समालेन। महला चौथा, सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करें व्यापार, वन जा रहे

जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सबदू वड़ा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नू

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सालाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सालाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

मन मुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अंकार झगड़ा कर दिया अंदिन गुदरे शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम वपारी नानका वड पागी पावो। पौड़ी जो तुद पावे सो पला, सच तेरा पाना, तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना, थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना, साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना, नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी, नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिस कह।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर पेटिया।

नानक नाउ जपंदो तिस्तानी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी। तो साधिचै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वछल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। नानक जा

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किच सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कार्य आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर।

विखे कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बौड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत्स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा, जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजक कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे। चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे। प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, पोरी परम वंजाए पिरी मोहब्बत हिक तू, जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा, चढ़के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए उदा

पौड़ी। प्रभ बेअंत किछ अंत ना है, सब तिसह करना, अगम अगोचर साहेबो जिया का परना, हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना, मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना, जो तुद पावे सो फला नानक दास सरना। श्लोक महला पंजवां।

पंजवा जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े ताड़ी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक मंत्र।

14। अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये। जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पव सागर सुख सागर माहे, पीव रहे जल निकुटत नाही, कह कबीर पज सारंग पानी, राम उदक मेरी तिखा।

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एक को एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत

मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

भरत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने भी नाही। चार चरण कहे बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्वस छोड़ महारस।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण।

उपजत बिन सतरोवत रहो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौका की माया। जस जंती मैं जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना। हंस

इस पर चाहे परचर होएस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गए मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

कोट उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ तब जाने

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यों गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा।

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरना

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे, विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

जागे, केतक सिद्ध पै लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो हुए ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना।

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत, माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोग उनसे क्या कहिए, जो प्रभु किए।

छोड़ न पव जल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है, रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेदिया पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना। रहाओ। निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर मानिया,

जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटो।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

जोड़न हारो सदा अतीता। ए कही है किस्मा ही, जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी, काको ठाकुर काको।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा। मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती तूटस नाही अनहद किंगुरी बाजी सुन।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे हो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे हो रे हीरा लाल अम

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे। चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस कहो शीश। बिखे बाच हर राज समझ मन बौरा रे। निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे गयो न राम जहाज। राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कठी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फांसी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब।

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुबद ना त्याग दयो، जो जो कर्म किए लालच्यों ते फिर ग्रह परयो، भगत बिन बिरथे जन्म गयो، साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ۔ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो، तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो۔ या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो، तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो۔ औद अनल तन तिन को मंदर चौ दिस ठाट ठयो، कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी۔ पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी، मैं ना ही कछ आए न मोरा، तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ۔ इस माटी में पवन समाया، झूठा परपंच जोर चलाया، किन्हू लाख पांच की जोरी، अंक की बार गगरिया फोरी، कह कबीर इक

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज

दास रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै।

पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय रागोड़ी यारवा आस पास कन तुरसी का बिरवा माज बनारस गाऊ रे ओ आकाश रूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आओ ना जाहू रे तोहे चरण मन लागो सारंग तर सो मिले जो बड़ पागो रहाओ वृंदावन मन हरण मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुम।

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो गया था, जीरे जाहेगा मैं जाना, अब जत समझ आना, जत जत देखो।

परम प्रकट होए नाचो, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे।

बस अनूप बीच पाई, कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई। रहाओ पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली, बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मूसे, दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

दिखै रोग पै बंधन पागे, मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ, दूसर मने न अनाना। चंदन बास पहे मन बासन, त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है खाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन में

निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तै त्रिभुवन राओ। खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बहुर ना।

निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

लक्ष्मी बरस्यों जो लियो लावे है, सोग मिटे सभी सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत

अंतरजामी राम समारोह, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा मेरी हरो विपत जन करो सुभाई।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंच।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर।

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा।

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सबादी क्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वीरा वीर, हित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहा। नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट दया। आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथया, और पखलाए जे असी किया।

भनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सास सुहागण होए, आशा मैला पहला गृह बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा

सिंध तन मन हर पै आगे जिंद झूठ विकार महा दुख दे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विगासे परमल रूप उजल मोती चूगे हंस सर्व कला जगदी

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बसे पूछ न होए, दूजा मेटे को सोए, हासा महला पहला, एक आवे एक जावे आई, एक हर राते रह समाई, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत पौजल, गुर शब्दी हर पार रंगाई, रहाओ जिनको

0: पोखरे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग भगत हर रंगा अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कहे कहे से मुए सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देख्या माया छाया नानक गुरमत नाम ते।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चोख।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे।

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशी ता तीर्थ वासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

दारी माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

है कोई जाति स्थावे बख्शे सोई वो प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूँ जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिंतु नाही विसरिया आसा मैला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मेला पहला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा ऊपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एकटे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनार

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कस्त जियले, कापड़ छोड़े।

सूत पोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे। मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो। पंच सखी हम एक पतारो, पेट लगी है जीड़ा चालन हारो। पंच सखी मिल रुदन करे हार, साहो पजूता प्रणवत नानक।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला खुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बौड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

हिंसा के मां हंडावो, जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत में जोगं, अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैठो, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्पूरे नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विपूतं, हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकं, कहो नानक सुन करथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है,

हर दर्शन पावे वड़ भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

होए, गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोक द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार, निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे न पीर, जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा

समाए सेवड पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई किरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम अगम।

आगे पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सो घरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे टिल न पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार।

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंगिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस साथ

कर्म कमाए सब दे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए ऐसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मनमुख रूने।

बसाए अंतर निर्मल अमृत सरनाए सदा सूचे साथ समाए हर तब वेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तह वेखा सोए गुर बिन दाता वरना कोए गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर पे सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे थिर नाम समाने जम्मा मरना है संसार मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा बहुकूर कमावे विष्टा का कीरा विष्टा माए समावे सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का सब

हर पल दृढ़ाए पौना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आशा मैला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरे न आवे जाए पूरे गुर ते साज समाए जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं न जाए पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाए जो किछ करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुरु शब्द सुनाए जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज सुनाए नावे जेवड होर तर नाही कोए जिसनो बक्से साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा मैला तीजा नृत्य करे बहु वाजे बजाए यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए अंतर लोभ परम अनलवाओ दीवा बले न सो जी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा तगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के बचन पगत खाए पाए हर जीव आप वसे मने आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल पगत हर स्यो चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए।

सोई, गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई, मैं समुदाता एक है और ना ही कोई, गुर कृपा ते मन से ता सदा सुख होई। रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध गवार, हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई, हर के पाने सालाही है पाने मने सुख होई, हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई। आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सभी आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर वया समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पथ तरा और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरा कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा।

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रव्या सब सास ग्यासा रहाओ, नाम ने सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ, हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मेला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्तै तिस आगे हम आदेश राव। गाए राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वै कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुम उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पट पावे खाए। नानक आख ना राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दी।

गुरपुरे सावास चलन जानिया लाहा नाम से सार सब सुनाणिया रहाओ। पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के कल तुरु।

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर सच्चे सच्चार मैल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वक्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ है गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए। राग आसावरी कर सोलवा के।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमर।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन कहुं व्यापे, एक संचय गिरही तिन होए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राती तन सुहागन।

चार जित ग्रह वसै सो ग्रह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरलै जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परखाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंक बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तो सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, फल खाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै ना ले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चार सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन कल्याणी, देख रतन यो मन लपतानी, सावा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साय पठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विश्व सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हट के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया, मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बख्शिंद, ये सौदा गुरमुख किने।

आसा मेला पंजवा दुख रोग पय गत संते मन निर्मल हर हर गुण गाए।

पावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जब जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिलड़ावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा,

जीवो मेरी माई, माई कहा करो यो मन ना तीरे, प्रे प्रीतम बैरागिर रहाओ, बस्तर विपोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कित न लेख है, पत शोभा और मान महत आज्ञाकारी सगल जगत, गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावाता सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक और बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुक्तक पाग तिन सब गुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्त आया, प्रभु मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा, आशा महला पंजवा पंच पदे।

सुबह में लोग चोआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अगर जोन तेरी पनिहारी इस धरती में तेरी सिकदारी सोयना रूपा तुझ पैदाम।

0: अस्त्र रख परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरख सुजान। आस्था महला पंजवा, एक तुके चौपदे,
1: एक कड़ी दिन उस मौत बहुत दिहारे।

सब अंत न जाने, पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी, प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी, जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया।

जंग बकरा मोको कहां डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से।

मिल सतगुरु तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ करकत हो न जाए रहा, कोट न आवे निकुट न जाए, है खर्च मन रहा अगाए, सो सच्चा हो जिस पर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस को लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आशा मेला कन्या, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है।

वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेब बिरानी कैसे गुणे अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लूक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ पगत पंडार।

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त और अंध

आए हर साधु हर समाए लाख करोड़ी मिले न के जिसे प्राप्त तिसी दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रसमाहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुर्मत अपनी

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कित न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम, संग जाम लाग पौ जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा।

उठत सोवत जागत विसरना ही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्यवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाव पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप समाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एह सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार

आधार अगद करे सास सास समारे न पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

हुकम पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने, संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवो पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा, गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद, प्रम में सोई सगल जगत तंद अंद को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला, चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु, नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की, जो तू करे करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया, त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया, जा को टेक तुम्हारी स्वामी ता को नाही चिंता, जा को दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता, कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम ना

ताऊ बिगुता जय कोई न राखे को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला, दोए ठौर अपने खोए इहां काम क्रोध मोह व्यापिया, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा हत जोग ना पछ।

ना छुपाया कूड़ कपट वंश निमुनी आदाला बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख संभाले आसा मैला पन्नवा उदम करत हो गए मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जना ले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरुमुख जागे आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा सामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्णो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे। आसा मैला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यों प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काड लिए मां पौजल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जा कै सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइए सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इक उतराखन हाय।

चित मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई खियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अदा।

अंग कूप महा कोरते बाँ पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभु अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हर्ष सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुटकी।

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे।

निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक।

तलय कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ताहो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।

साध संग हर कीर्तन गाये यो स्थान गुरु ते पाये राव दूजा आसा मेला पंजवा कर में सुख बार फुल सूखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन तुझ पावे राव तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जप तह दुख डेरा हुक्म गूंजे सोई परवान सात सब ज्ञाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा मेला पंजवा जहाँ पठावो तह तह जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गोसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगा

नानक नित इवै त्याई गत होवे संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दूख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अंदिन चीना आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चौकुंत माने।

सगल सृष्टि पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक मीठे लागे, आसा मेला पन्नवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो,

के सूत्र होई कट कट अंतर रया सोई ओ पत पर लो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लब देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पावना लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एवं सतल भया, कहु नानक प्रभ करी।

तारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मोह मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आप।

कहो नानक गुरु परम को खोया, अनुज रूप सब नैन अलोया, आसा मेला पंजवा, उकत स्यान किछु न जाना।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभु तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक तो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आए इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

निसारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्स तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद कली बनी जाके गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध

को जन पूरन रहे अघाई कछु न थोड़ा हर पगतन को खात खर्चत बिलछत देवन को रहाओ जाका तनी अगम।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मेला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया। मिट गई गणत बिना सो संसार, नाम रते जन पै भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत, पौ पौ मिट्यो मेरे मीत। जो मैं ओट गई प्रभु तेरी, पा पूरन होई मनसा मेरी। देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज पुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत। कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधया, काल के फांस सकत सर सांधया। बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड नहीं चल कर पाया। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो पुके नावा। उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल। उनके संग तुम सब को लोरे।

बाहर, उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विथाटी, ओस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

जहाँ उब निर्मल ता हम जचना, हम किच नाही एके ओही, आगे पाछे को सोई, नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पाठ कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए, पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान, सरई सुहागण।

माथे पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही।

उपत होए के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट काट गृह।

अब मोर है मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मिठा माने, एक नाम संकन आधार।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श किया।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हा, दृष्ट देख जैसे हर चंद।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकुर गौरो नानक शरण पछानी।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। दया करो किर्म अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम कौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। धर्म राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिए कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ ना।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

कुटुंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवां तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे, नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना, एक है सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना, आशा मेला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाए, ओहो अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हर का चोला, आसा मेला पंजवा। अपनी भगत निवाहे, ठाकुर आयो आहे, रहाओ नाम पदार्थ हुए सक

आया गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा।

नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विधाता, नानक कट कट आही। आसा मेला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ। राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रम सुआ, कहो नानक जिस सतगुर पेटिया, सो जन ने चलसिया। आसा मेला पंजवा, कर चौथा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। ओह निहो नवेला, अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ, जो प्रभ पावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे। प्रभ संग मिली जय, इहो मन दी जय,

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर्ष शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु खिनहु उठ धायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु जोग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, अनस्यों तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

ना रहाओ। टूटे अन पराना रवियो सर्व थाना लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बड़ पा गया मेरे मना रहाओ।

आशा लागो तन की रहाओ, सुख कह हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार सोम ज्यो डोलत, नै सुध राम भजन की, मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना सैतन की।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल ते दूर, जल में ज्योत रहा करपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

सोच तानी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मोह बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहे आ जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुदनाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख हुए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मैं गो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार समावे तरण जगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहे आबूजे बिक्का माता जग स्यो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण को वे।

कोई न पावे, बालक बिरद न सुरत प्राण, पर जो बन बूढ़े अभिमान, बिन नावे क्या लहस निदान, जिसका अन तन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल पाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर पागे, सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम दिन क्यों मन तीरा अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

सेवाना बन खंड माया मोहे हैराना। इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मेले काल कंटक मारे सच पेले। एहो मन कर्मा एहो मन तर्मा एहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी एहो मन मूरा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई। एहो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर।

आस इकत छाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरुमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नही है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम।

दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला, जो पावे त्यों राख दयाला। गुरमुख राम मेरे मन पाया, रोग मिटे दुख ठाकराया। अवर न औषध पंत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता।

काट काट सुर नर सह समाद पर पुर पार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सह ध्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वछल भगता हर संग नानक मुक्त पए हर रंग।

राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राव। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार। बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कल

संचय तन जाए बिन हर भगत न पवीताए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन सह मो विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोत्सरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान संगोली हर

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो।

ना होई जे चलदा ले चलिया किछ संपे ना ले ता तन संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछो तावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत परावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो पावा।

अंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थवासा आप न चीने।

जय, गुरमुख नाम ते आईए, मन मंदिर पी जय रहाओ, कूड़ा लालच छोड़िए, तो साच पछाणे, गुर के शब्द समाइए, परमार्थ जाने, यो मन राजा लोभिया, लुभ तो लोभ आई, गुरमुख लोभ निवारिए, हर्षो बन आई, कल्लर खेती बीजिए, क्यों लाहा पावे, मन मुख सच ना पी जई, कूड़ कूड़ गडावे, लालच छोड़ो अंधे हो, लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी, दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई, एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई, मन मुख पत्थर से

नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले जम्मन मरना आखी है तिन करते किया आप गवाया मर रहे फिर मरना किया साई कार कमावनी तुरकी फुरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै सच्ची वडियाई।

पर खाए गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई।

नीले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा तुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दरगे नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख कर

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाये कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाने। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जाने। जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे।

जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम समाणी। आसा मेरा तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया, हर नाम निरंजन मन वसाया, शब्द कीन सदा सुख पाया।

पावे सोए, साची बाणी महल प्राप्त होए, गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए एहो सिर दी जय आप गवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तै आप कराए आपे गुरमुख नाम वसाए आप पुलावे आप मार्ग पाए सच्चा शब्द सच समाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मनमुख मोहे परम पुलानी बिन नामे सब फिरे बोराणी तीन पवन में एक काम आया मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया बहु कर्म कमावे दुख समाया सतगुर सेव सदा सुख पाया अमृत मीठा शब्द विचार अंदिन पोगे हूं मैं मार सहज आनंद कृपा धार नाम रते सदा सच प्यार हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार हर जब पढ़िए हूं मैं मार हर जपिए पै सच प्यार नानक नाम गुरु।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख पलक सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सतगुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुर ता मिले जा नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई। मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा। आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा। भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर।

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत जो आई कर दर छोड़े अपना पर कर चूठा जा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखी है आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमति साला ये बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमति कर चानना नाम अंत सखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमति नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

का बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ त्यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने।

नानक नाम रते तिन हों मैं गई सच्चे रहे समाए आसा मैला तीजा। सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रप

ना यो रंग लह ना जाए रहाओ। हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ। गुर कै पै पाए जोरते सिफ्ति सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

पाए, बिन संगति सब ऐसे रहे हैं जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

मेल लै एक दरगे मार कडे कूड़ियार, एक तुर पवित पावन है तुद नामे लाए, गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए, ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर उतवताए, नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ना पहुँची है कथ कहने अंत न पाए, गुरते कीमत पाई है सच शब्द।

सत निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए रहाओ, मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे। जिना पिर का स्वाद न आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे, गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार, जो इतला है लायन पग

विच्चों आप गया नाव मनिया सच मिलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सफल तिना का जन्म है तिन माने सब कोए रहाओ हों मैं मेरा जात है अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर पेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवे निज पाया परे अकुट पंडारा।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन्न रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुर पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साद पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है निचल हर को नाओ, कर मित्राई साध चो निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

दर्शन कौ बल जाऊं, जिस सिमरत दुख बीस रह प्यारे सो क्यों तजना जाए। यो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न पाए।

या पंडित आप थिया छछ छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जज जान मंगत जन जाचे

जाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

परमेश्वर वेखण को परपंच किया, देखै बूझै सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रया। फफै पाही सब जग पासा, जम कै संगल बंद लया।

सिखा। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। तद्दे तावत वर्ज रख मूड़े, अंतर तेरे निधान पया। गुरमुख होवे ता हर रस पीवे, जुगा जुगंतर खाए पया।

पछाता। निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया। नानक जिन को

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

जप तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर, तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरुमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग

कर्म विधाता, दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा के रे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा, कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेर ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम फुली हर वर न पाए राम, कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन पगती जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे हर

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले, मन से आणप छोड़िए

हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम। हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया। अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे गाई सतगुरु बाणी। नानक दात करी प्रभ दाते ज्योति ज्योत समाणी।

लाहा हर नाम ले जाहे, नानक मन तन अर्प गुर आगे, जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत परे पंडार।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई, हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर परचय गुर परचय।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र होए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाए, मन तन शीतल सिगार सब होआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूड पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासिया।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए।

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, गुरुमुख हर पढ़िए गुरुमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर हर नाम जपिया दुख बिनसिया, हर नाम परम सुख पाया, सतगुरु ज्ञान।

जियो हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुरु पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई परम चूका आमन जान जियो आमन जाना परम को पागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सिखाई गुर सबदी हर रस भोग जियो हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया से तन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगे।

पदार्थ हर हर कृपार्थ शोभा गुरमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई, हर हर लिव लाई हर नाम।

कल युग हर किया पग त्रै किया पग चौथा चिकै टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद देवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया निक आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो, हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय, जिसकी वस्त सो ले जाए जियो, मन मुख करण पर

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया।

अवस्था महला संजीवा छंत कर पहला अनदो अनद घना मैं सो प्रभ दीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन माने।

ब्रह्म कोट आराध ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनेक शोधन वंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन कौ निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनेक पाक गुप्त प्रगट जा को अराधे पौन पानी दिन सुरात। नक्षत्र शशियर सूर त्यावे बकुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जा को जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए सांग साथ। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवा तेती न जाय गनी। अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश साधे तर चरनी। ऐसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पेट साधु संग जमपुर ने जाइए। दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याय सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए। नानक प्रेम पे चरण जम पे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए। पावन पतित पुनीत नाम

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तें तें प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह जिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह जिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है।

कर बैस बासी तज उदासी कर जोर दिन रहन जागी है नानक वखाने गुरु वचन जाने आओ सखी संत पास सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु वचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपन त्या कछ न कहे जम काल नानक मन तम सुखी होए अंते मिले गोपाल संत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न पावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे किसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो राख नहारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही नेको पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा कट कट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत पिन्नी रैनड़िया चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे।

गुण गुण गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे, भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे, सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने, बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाने, सुख सोए लड़े हर गावन लागे, साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे, सुख सहज सर से हर नाम रहसे, प्रभ आप कृपा सारिया, हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे। आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी काल बपड़े जितया,

नानक कमाना संग जुलिया नह जाए किरत मिटाया। काथो वो मिर्ग जिवें पेख रैन चंद्रायण सुखो दुख पए नित पाप कमायण पापा कमाने छड़े नाही ले चले कत गलाव्या हर चंगोरी देख मूठा कूड़ से जा रावया। लब लोभ अंकार माता गर्भ पया समायण नानक मिर्ग अज्ञान बिन से नह मिटे आवन जायण। मिठे मखमुआ क्यों ले उड़ारी हस्ती गर्भ पया क्यों तरिये तारी तन दुहेला पया खिन में खसम चितना आयो। दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो गुज्जा कमाना प्रगट हुआ ईस उते फुहारी नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभु की चरणी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर शरणी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत पर आया। राख लिए रखन हार है सदा निर्मल करनी नानक नरक न जाए कभू हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती रावो सहु आप निड़ा प्रभ संग सोहंती संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सुरैणी रावी है सास सास चितार जीवा प्रभ पेख हर गुण गावी है। बिरहाले

दूते देन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज जीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई ने अंत जाई पाया, बिन वंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया, नरक ना दीखड़िया सिमरत नारायण, जय जय तरम करे दूत पहे पलायन, परम तीरज सह सुखिए सात संगत हर पजे, पर अनग्रोह राख लीने मोह ममता सब सजे, गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायण, निज सिद्ध चरण गहे ता के हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नानक सरन स्वामी।

साथ है, संग देखे करणहारा काय पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए, आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते, बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साथ संगे

आचार्य शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा दिनवंत नान सदा सजी है प्रभ एक करण हारा खोट न कीचई प्रभ परखण हारा कूड़ कपट कमाऊं गड़े।

आया जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा बिन वंश नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर संदौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक दिन कछ

सतगुरु प्रसाद। कमला प्रम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गहबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रेय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी तुझ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओहो बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप पापा विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह संत।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबुद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा सेज सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरु बिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाहो श्लोक महला पहला।

सच्चे तेरे कण, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार, सच्चे तेरे कर्ण सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर, सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा प्रमाण, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लग करोड़, सच्चे सब कान, सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, ना सत्यायन सच, जो मर जमे सो कच ने कच, महला पहला, वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सतन्याओ, वड्डी वड्याई जाने चलसाओ, वड्डी वड्याई जाने अलाओ, वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा आपे आप, नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सरबर जाए, महला दू जाए, एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, इकना हुक्म समाए लए, इकना हुक्मे करे विनाश, इकना थाने कढ़ लए, इकना माया विच निवास, ए पे आख न जापई जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आख करे परगास पौड़ी, नानक जी उपाय कह लिखना वै तरम बहा लिया, ओ कह सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड़े जिजमा लिया, थाओ ना पायन कूड़ यार मौका ले दो जुकचा लिया, तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया, लिखना में कर्म बालिया, श्लोक महला पहला, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत, विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी, विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह, विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर, वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला, कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार,

कह पाए वे कह लोक हसे कर जाए। रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तत्ती नाल। गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरपव निरंकार सच नाम जाका की आसगल जहां। सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो। सिक्की सिक्ख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार। कोलू चरखा चक्की चक फल वारोले बहुत अनंत। लातू माधानी आन गा पंखी पौधिया लैन नफा। सूए चार पुआई जंत नान पौधिया गंत नांत। बंधन बंद पुआए सोए पय किरत नचे सब कोए। नच नच हसे चले सिरोए उड़ ना जाए सिद्ध न होए। नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी। नाओ तेरा निरंकार है ना ही ले नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आप गवाइए। जे लोड़ है चंगा अपना कर कुन्हू नीच सदाइए। जे जरवाना परहर है जर वेश करें दी आइए। को रह न परिये पाइए श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ फरियत पढ़ पढ़ करे विचार। बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार। हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार। तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार। जोगी सुनते आउन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार। सतिया मन संतोष उपदे देने के विचार। दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार। चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार। एक होदा खाए चले ऐसाओ तिना बेकाई कार। जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार। कोई जी आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार। नानक पगता पुपसलान सच नाम आधार। सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला फैला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार। कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार। जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ तो है अंगियार। नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी। बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया। जग जीवन दा का पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ। हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे। हौ विच परिये हौ विच होवे। हौ विच जाति जिनसी खोवे। हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया। हौ मैं बूझे तांगर सूझे ज्ञान विहूणा कर कतलूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा। हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाए। हौ मैं एही बंद

पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ परी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बर्फ बर्फ, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आर जा, पढ़ी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बकर न पहरे एन पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किस खाई न पाई, रह बिमानी मरी मसानी, अंग न जाने फिर पछतानी। सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उन्दे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताड़ी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

सब जग चलनहार, पूर मिठा पूर माथो पूर डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाद कूड़ो पूर महला पहला। सत्ता पर जानिए जान दैसा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा पग करे प्यार, नाव सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तर्क काया साध के विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सकीले, गया जाने जी की किछ पुन दान करे।

पाप कड्डे कोई नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़ी है होए एक मन अलग से आई है फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे

होए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए, नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दार।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी कर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवजग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जन पाके वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल लह इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर नया तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने भेयो नानकता का दास।

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताऊ मी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गया हारी है, पढ़िया अत्यो मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाहो, त्रेत रथ जत का जोर अग्गे रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आठ साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा परपूर, राम नाम देवा मैसूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत धीरज अत मुच ओज आवे आस कर जाहि निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए ताका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुक्त ऊठ बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे वे सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण किया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाहो कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाय मने पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे निदारी तग ना तैरी तग ना अखी तग ना जेवा तग ना खी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता

कर लावो गोबर कर न जाए, तोती टिका तय जप माली तान मले छा खाए, अंकर पूजा पढ़े कते बा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे करंगा महला।

सोगवे मौका पे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो यो न्याओ महला दूजा ना प्याने दोस्ती कदे ना वैरास जिहा जाने।

पौड़ी चाकर लग गए चाकरी जे चल खसने पाए हुरमत किसनो अगली ओ वजो पे गुणा खाए खसमे करे बराबरी फिर हर अंदर पाए वजो गुआए अगला मुँह मो पाना खाए जिस दादुता खावना किस कही ऐसा बास नानक हुकम न चले नाल खसम चले अरदास।

परमा साहिब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार।

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण प्रम पागा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै कोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिया।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाधा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे। नाको काटी कानो काटी काट।

प्रमना लुंजत मुंजत मोन जता तर अंक कऊ मरना तांते सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाते कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इयो रामे जंपो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावजे कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम तकल

पर्वत छाया कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक ओज से द्वारा

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरख की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कहता ही, इस बंदे से जुल्म

एक तो के संत सुनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तकना जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

कूटा, मंदल ना बाजे नट पे सूता, बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी पंख न बजेर बाब, फूल बिगारे अपना काज।

का सार होगनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कछ तप ना कियो 30 वर्ष कछ देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुगद फिरे। चरण शीस पर कंपन लागे नैनी नीर असार बह। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिवावे लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर कन पायो अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए।

बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। सू में तन रासन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जम कर दंड मुंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे, रहाओ रोजा तरह निवाज गुजारे।

अकल है जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे तब तो दीन पछाने खसम पछान तरस तरजी में मार मणि कर फीकी आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरी की माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कहे कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा जगन नगर।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पए संग तेरे, इंद्री का बल खाका। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाता। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने प्रमते। खाका मन कुंचर उर खाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पए दसह बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्याव, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी। जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीठी रहाओ। सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साज पछाण्या तिन सर्पनी खाई। सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा,

बल अबल क्या इसते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ, कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र।

कोई आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

कहां गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा करे मनावे अल्लाह।

स्वागत जी सिंघार है, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही मैं, तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई।

गुप्ता ही रा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई आसा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरते ही है बुरी अब की स्वरूप।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगटे जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगट काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद है अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म गतीत आशा करवत पला ना।

जैसे मेंढुक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाई, हर का संत मरे हाड़म बैठा सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक से त्यावो बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नरक से

विचरत आनन होई। मिथ्या परम अर्ष पर मनोरथ सत पदार्थ जानिया, सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन मानिया। कैत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, कट कट अंतर सर।

आशा मन मेरो गजी जिहबा मेरी काटी मत मत काटो जम की फांसी कहां करो जाती कह करो पाती राम को नाम।

आठ पहर अपना खसम के आवो। सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांडे। काहे को की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। खासा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा से ना भाव से। रामा भगत है।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जान है ताकी के तक आस मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल सास अदग लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम मां जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग संत चो ओलग ओलगनी और इक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन। रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल हम बपुरे जस

चरण अरविंद पान मन, पान करत पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन, ताम है मगन हो।

आओ हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहो, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहुत जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समा।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

काकिन कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए तुम ना आइए ऊंची दुनिया लग ना आप वंजाइए।

कार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरे, दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेविए गोविंद प्रीत उपजे, अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी। आप से ती आप खाया, तामन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समयी। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये, जे लोचे सब कोय। पूरे की पाल विच्चों निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाए।

जाओ। सतगुरु मिले हर मन वसै, सहजे रहे समाए रहाओ। जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए। शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

ही अंत गया पछताए। त्यों मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्चे रहे समाए। गुजनी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन शिक्षा छे। दूजे पाए जेता पढ़े परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुरु मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न हो।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले कृपा से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याये, सबको दान दे प्रभु ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदा।

उत्तम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागी वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत पगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, है अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरण आई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव डे आई, तन तन सबा सह।

जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम से आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम है हर सोचित लावे अमृत बचन सतगुरु की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर्षियों बन आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर सुनाना, प्रम आए थर सारी। अनक सोच करे दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेख बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख न बिसरो।

रहाओ, हर तन स्नान हर तन ज्ञान, हर संग लाए त्याना, हर तन तुल्हा हर तन देड़ी, हर हर तार पराना।

अमृत पाई आश्चर्य हर प्रकार खावो खर्चो टोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

कहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास।

कल कलेश मिटे चिन पीतर नानक सहज समाया गुजरी महला पंजवा। जिस मानुख पे करो बिनंती सो अपने दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ तित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे तृष्ण न बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांचे सुख नानक क्यों पाया। गुजरी मेला पंजवा पंच पदा।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त फबी रहाओ। इष्ट मीत बंदक सुत पाई, संग बनिता रच हसिया, जब अंति औ

सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय। जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन।

कहो नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मेला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत, तिन का बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श।

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिद माह समाये तह परम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक पही करते की और आस बिदानी लाही।

चित चित वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपे नानक।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु केते दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपा।

मिटे सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत वीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रवे आसोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दयाल प्रभ

पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रुद्र तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रमते पुकारे कत नाई छोट हर चरण शरण अपार।

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रवदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिने सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्ण महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध

चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताए बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ ना जाए। है जी काल सदा सिर ऊपर।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुरु वात हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा। हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे सहज हरी, बिन हर नाम बिरथा जग जीवन, हर बिन नेफल नेत करी।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। है जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अधुआ राई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। है जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।